सुप्रभात। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 6 तारीख, तदनुसार 28 जुलाई वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया

0: तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

वंदन वार में सबसे पहले सुनिए चिंतन। आज का चिंतन, परिवर्तन शाश्वत सत्य है, इसलिए जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। तो स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक दिन बदलेगी जरूर। ये था आज का चिंतन। और लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले विविध भारती मुंबई से प्रसारित होने वाले

कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ, 6:45 पर संगीत सरिता और 7 भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के युगल गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 8 समाचार प्रभात, 10 का समय रहेगा हिंदी समाचार का और 12 हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। सायंकालीन प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर हिंदी में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से और 6:20 पर पंजाबी समाचार विविध भारती के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर समाचारों में 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि हिंदी समाचार सुनेगा 8:45 पर और रात 11:00। विविध भारती मुंबई से त्रिवेणी सुनेगा प्रातः 8:15 पर और चित्रलोक का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:30 और रात्रि 8:15। हमारे केंद्र से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार आप सुनेंगे। कार्यक्रम आज का अखबार के अंतर्गत समय रहेगा 9:30। दस बजकर 5 पर सुनेगा फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा। पोषण और स्वास्थ्य पर होगी बातचीत कार्यक्रम एफएम लाइफ लाइन में। एफएम लाइफ लाइन का समय रहेगा 11:00। लाइव फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रा दे सुनेगा 11:30 पर। विविध भारती मुंबई से 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 त्रिवेणी और 2:30 पर गोल्डन हिट्स सदाबहार नगमे।

0: सहेली कार्यक्रम होगा दोपहर 3 बजे, 4 बजे पिटारा में आज सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। कुछ पंजाबी गीत सुनेगा शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और 10:32 पर कार्यक्रम सुरसांझ में। जयमाला ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7 बजे, 8 बजे हवा महल और 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार और 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से श्री रामचरित मानस।
1: आज के फनकार रात 9:30 पर केंद्रित रहेगा अभिनेत्री कुमकुम पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश खोखले। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था आज का झरोखा।

लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे अरण्य कांड का भाग 263।

छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती। सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्ववत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती है।

0: आज सुने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: पिछली बार हम राग यमन के बारे में बात किया था, अब आज हम राग छायानट के बारे में बात करेंगे। अभी छायानट राग बहुत सारे गाते हैं, तो उसमें कौन सी बात आना चाहिए ये बंदिश के माध्यम से ही आपको मैं समझाऊंगा। इसमें एक बंदिश है, तन्न मदन सबो पुन्न पर वारू, ये मैं बंदिश गाता हूँ।

मध्यम का कितना प्रोमिनेंस है ये आप सुनते होंगे, तो मध्यम बहुत ही प्रोमिनेंट है उसमें छायानट में। अभी दूसरी एक इस राग में पुरानी बंदिश, एक करत ओमो से नेहा की बात हो।

बहुत सारी कम दिखाई देते हैं, सुनने में नहीं आता है, लेकिन ये बंदिश में इसका प्रयोग किया है। तो छायानट गाते वक्त इस प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है।

तो चाय नट में मध्यम का प्रयोग कैसा किया है ये बंदिश में बहुत ही ठीक तरह से दिखाया है। ऐसा मध्यम में मध्यम का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कहा था कि राग छायानट में मध्यम की कितना प्रोमिनेंस है। अभी ऐसी एक बंदिश मैं दूसरी सुनाता हूँ जो बहुत सारे लोग

और ऐसे कई बंदिश है जो पारंपरिक बंदिश कहते हैं हम। अभी इसमें एक परे संगति जो प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर मैंने भी एक बंदिश बनाई है जो आपको सुनाता हूँ।

ये जो बंदिश मैंने गाया माने ना जिया मुरा, ये मेरे गुरु के ऊपर किया है। मैं कहता हूँ कि आप तो छोड़ के गए, तो हम तो बेचैन हो गए। अभी हमारी जो ज्ञान की प्यास है वो कौन बुझाएगा, ये मेरा कहना है उस बंदिश में। अभी एक दूसरा बंदिश सुनाता हूँ जो ही मेरी है, एक ताल में बंधी हुई है। बलमा तोरी प्रीत, ये तो एक कॉमन सब

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। इसे प्रस्तुत किया जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास ने। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: अभिनेत्री थी, उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो आज हम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीत में उन्हीं पर फिल्माए हुए गीत। आपको सुनवाने जा रहे हैं ये सबसे पहला गीत, गंगा मैया तो है पिहरी चढ़ाई बे। इस फिल्म से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में ये गीत है, शैलेंद्र के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।

0: आएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। तो हम बता दें आपको कि अभिनेत्री कुमकुम को फिल्मों में लाने का श्रेय फिल्मकार गुरुदत्त को जाता है। 1954 की फिल्म आर पार का वो गाना किसे याद नहीं होगा, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर। इस गाने में वो पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म उजाला का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत पर किया है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। केएल परदेसी का लिखा गीत है कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर। दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से।

0: कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

बेहतरीन गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमकुम एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना भी थी। उनकी इस कला की झलक कोहिनूर फिल्म के गाने मधुबन में राधिका नाचेरे में देखने को मिलती है। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं लागी नहीं छूटे राम, इस फिल्म का गीत। सुमन कल्याणपुर ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभिनेत्री कुमकुम को और उन्हीं के

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

कल्पना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत मोहिनी फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने एंड दत्ता ने संगीत दिया है।

अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है SN त्रिपाठी ने। कल यानी 29 जुलाई को लेखक राजा मेहंदी अली खान की पुण्यतिथि है। इनकी तो के माध्यम से हम उन्हें याद कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रम यानी हम हेराही प्यार के इस कार्यक्रम में भी हम उन्हीं के लिखे गीतों को आज आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आपको अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं।

0: मिस्टर एक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में तनवीर नकवी ने इस गीत को लिखा था और एन दत्ता का संगीत था। और आज हमने बात की अभिनेत्री कुमकुम की, क्योंकि आज थी उनकी पुण्यतिथि। कई सदाबहार गीतों को उन्होंने अपनी सजीव अदाकारी से अमर बना दिया। उन्हें हम स्नेहिल नमन करते हुए आज याद कर रहे थे। उन्हीं के मधुर गीत हमने आज आपको सुनवाए और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: श्रोताओं, विविध भारती से आप सुन रहे हैं अगला कार्यक्रम जो हम लेकर आ रहे हैं बस थोड़ी ही देर में, हम है राही प्यार के।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए

0: संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: हम है राही प्यार के लेकर आपके लिए आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लेखक राजा मेहंदी अली खान के द्वारा लिखे गए गीत, क्योंकि आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। कल 29 जुलाई को उनकी भी पुण्यतिथि है। तो राजा मेहंदी अली खान के बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत के महान कवि, लेखक और गीतकार थे। इन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन के साथ गीतकार के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी 1947 की फिल्म दो भाई से। उनके लिखे गीत बेहद लोकप्रिय हुए। मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कल 29 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम उन्हें याद करते हुए नमन करते हैं और उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ा हुआ अविस्मरणीय गीतों का खजाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये पहला गीत एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत ओपी नैयर के संगीत से सजा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे।

0: से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है रही प्यार के। रेशमी रुमाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है बाबुल ने।

नीला आकाश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत, मदन मोहन का संगीत।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया राजा मेहंदी अली खान के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत, अली बाबा और 40 चोर फिल्म का नाम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: कल्पना फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खान के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन

0: सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये चुनाव, जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी

0: शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
1: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अगला कार्यक्रम त्रिवेणी।
4: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है।

प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं, और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है, वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
5: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। अपने शरीर को समय दें, मन को मुस्कान दें और जीवन को नई ऊर्जा दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान बनती है। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का सुंदर तरीका है। संतुलित भोजन, नियमित

दिनचर्या और सकारात्मक विचार हर दिन को बेहतर बनाते हैं। इसी प्रेरणा के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम चित्रलोक में। नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए आज के इस कार्यक्रम चित्रलोक की शुरुआत कर लेते हैं और कर लेते हैं थोड़ी एक्सरसाइज।

Shaking your boat.

जुम्बा ये सॉन्ग सुन रहे थे आप गुड न्यूज फिल्म से। रोमी ने इस गीत को गाया था, वायु ने लिखा था और संगीत बद किया था तनिष्क बागची ने। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। हम आपको बता दें कि आज है 28 जुलाई और आज हम मना रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में वायरल हेपेटाइटिस के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके, जिससे लीवर में सूजन हो सकती है और जो लीवर से संबंधित गंभीर बीमारियों और लीवर कैंसर का कारण बन सकती है, इसके बारे में जानकारी हमें मिल सके और हम जागरूक नागरिक बने। अधिकांश तीव्र हेपेटाइटिस संक्रमण हल्के लक्षणों वाले होते हैं और कभी कभी इनका पता भी नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर यकृत रोग का कारण भी बन सकता है और जानलेवा भी हो सकता है, जिसके लिए यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वैसे इस दिवस को मनाए जाने के पीछे जो इतिहास है, डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग, जिन्हें बेरी ब्लमबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, एक चिकित्सक और आनुवंशिकीविद थे। उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और हेपेटाइटिस बी का पहला टीका विकसित किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियों और योगदानों को याद करने के लिए 28 जुलाई उनके जन्मदिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में चुना गया। वैश्विक स्तर पर मुख्य लक्ष्य हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमणों को समाप्त करना है, यही है इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य। तीव्र वायरल हेपेटाइटिस के विपरीत ये तीनों संक्रमण दीर्घकालिक हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं जो कई वर्षों तक चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने

लिए WHO देशों से विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने का आग्रह भी तो करता है। इस वर्ष 2026 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे विस्तार से समझें। यह दिवस हमें जागरूक कर रहा है, तो हमें अपने आप को इस दिवस के लिए जागरूक बनाना ही होगा, ताकि हम इस रोग से 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त विश्व की ओर बढ़ सकें।

0: संजू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। शेखर अस्तित्व ने इस गीत को लिखा था, विक्रम मोंट्रोस का संगीत था।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और जयेश गानी की आवाज में ये गीत फिल्म मिलेंगे मिलेंगे से। समी ने इस गीत को लिखा है और संगीत बत किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज है अभिनेत्री आयशा जुल्का का जन्मदिन। हम उन्हें विविध भारती के परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां देते हैं। उनकी फिल्मों से संबंधित सारे गीत आज आप सुन पाएंगे शाम को कार्यक्रम तराने नए पुराने में। साथ ही आपको बता देते हैं कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा लेखक राजा मेहंदी अली खान पर, और रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री कुमकुम पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत हेलो ब्रदर फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, फैज अनवर के बोल, हिमेश शमिया का ही संगीत।

0: में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गुलाम फिल्म का गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने

श्रोताओं, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही क्लियर होता है दोस्तों, जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी नागरिक जागरूक बन सकें और अपना सहयोग इन कार्यों को दे सकें। हम सभी जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, हर एक का अपना महत्व है जो पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, इनका उचित उपयोग करना हमारा हम सबका परम कर्तव्य बनता है और यही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाया जाने का उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें नेचर की रक्षा करनी ही होगी और उन्हें भी आगे यही सत्कर्म करने का वचन देना होगा। प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि सुकून की सबसे खूबसूरत भाषा प्रकृति ही बोलती है। हर सुबह धरती को, सूर्य को, आसमान को, हवाओं को, पानी को, सबको धन्यवाद दीजिए। हर शाम इनसे दोस्ती कीजिए। पेड़ों, नदियों और हवाओं से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, उसे संवारें, ताकि आने वाली हर सुबह और भी हरी भरी, खुशहाल और मुस्कुराती रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम मनाएंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।

0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मैं
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
0: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से। दिलजीत दोसांझ की आवाज है। जानी का लिखा गीत, बी प्राक और तनिष्क बागची का संगीत।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। और आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: श्रोताओं, अब समय है अखबारों से ली गई सुर्खियों के साथ साथ कुछ मनोरंजन का। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: आज का अखबार।
0: नमस्कार दोस्तों, आज का अखबार में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर। कार्यक्रम में सबसे पहले करते हैं बात कि आज के दिन में क्या है खास। 28 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो कारण बनता है लीवर के रोगों का। हेपेटाइटिस से जुड़ी कुछ जरूरी बातों में ये है कि हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है, जिसके 5 प्रकार A, B, C, D और E हैं। बी और सी सबसे खतरनाक हैं, ये लीवर सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस बी से बचाव का टीका उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस सी का समय पर जांच और दवाओं से ही इलाज संभव है। हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, ये है वर्ष 2026 का थीम। हेपेटाइटिस बी के वायरस को खोजने और हेपेटाइटिस बी टीका विकसित करने वाले डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया 28 जुलाई को। साफ सुथरा खाना, पानी, साफ सफाई का ध्यान, सुरक्षित यौन संबंध, इंजेक्शन, टैटू, पियर्सिंग के दौरान रोगाणु रहित उपकरणों का इस्तेमाल बचा सकता है हमें हेपेटाइटिस से। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और नवजात शिशुओं का टीकाकरण, ये सभी बातें हमें रखनी होंगी ध्यान में। और दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की। रिस्टोरेशन, रिसीलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी, हवा, मिट्टी और ऊर्जा।

प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, पेड़ पौधों जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण, पर्यावरण को सुरक्षित और हरा भरा रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वस्थ होगा पर्यावरण तभी तो स्वस्थ होंगे हम।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब समय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और मुख्य खेल समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से मुलाकात की और भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना। सरकार ने भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर को फर्जी बताते हुए किया उसका खंडन। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ज्ञापन का उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का किया शुभारंभ। वर्ष 2032 तक वर्ल्ड खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी पहुंचेगी 5%।

भारतीय खगोलविदों ने निर्माण की प्रक्रिया में दुर्लभ ब्लू स्ट्रैगलर तारा BSS खोजा, मिला तारों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण।

0: एंटी पेपर लीक बिल पेश, विपक्ष के हंगामे में चलते नहीं हो पाई चर्चा, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव आज संभव है बहस। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा किया जारी। 6 महीने में आरसी ट्रांसफर नहीं तो वाहन पर खरीदार का नहीं डीलर का होगा हक। ट्रंप ने रोकी बमबारी, लाल सागर में थमे जहाज, ईरान बोला हॉर्मुज पर हमारा कब्जा, नहीं चाहते बातचीत, ट्रंप बोले नहीं माना ईरान तो होगी कड़ी सैन्य कार्रवाई। देश में लड़कियों को गोद लेने में 8% की बढ़ोतरी, 26,000 लोग अब भी कतार में। भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से पत्र एवं पार्सल की नई श्रेणियां करेगा लागू, ग्राहकों के लिए संशोधित शुल्क भी किए जाएंगे लागू। यूक्रेन को ड्रोन रोधी एआई तकनीक देगा ब्रिटेन, बर्नहैम से मिले जेलेंस्की। अब कुछ खेल समाचारों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर लगा रहे विजय तिलक, देश को 2 और सिल्वर दिलाए ज्ञानेश्वरी यादव और राजा मुथु पांडी ने, कुल 6 मेडल इनमें से 4 वेट लिफ्टिंग में। शूटिंग विश्व कप में भारतीय बेटियों का शानदार प्रदर्शन, ईशा सिंह को स्वर्ण और मनु भाकर ने जीता कांस्य। ये तो थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और कुछ खेल समाचार, यहाँ लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद एक गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर और कार्यक्रम है आज का अखबार। आइए अब चलते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की ओर। समय है रीजनल न्यूज का। उमस से उबारेंगे बादल, चंडीगढ़ पंजाब समेत 25 से ज्यादा राज्यों में 5 अगस्त तक अच्छी बारिश की संभावना। हरियाणा में अब तक कमजोर रहा मॉनसून। हिमाचल में नदी नाले उफान पर, कई जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, 108 सड़कें बंद। संगरूर में भाजपा जिला दफ्तर पर 2 युवकों ने पेट्रोल बम से किया हमला, जांच शुरू। पंजाब सरकार ने फ्रंटलाइन सफाई कर्मियों को सम्मान और आर्थिक राहत देने की दिशा में लिया बड़ा फैसला, अब नियमित कर्मियों के बराबर मिलेगा उन्हें भी वेतन। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 18,015 पद खाली, लुधियाना सबसे ज्यादा प्रभावित। हरियाणा की राजस्व सेवाओं में बड़ा बदलाव, अब घर बैठे मिलेंगे जमाबंदी, इंतकाल, फर्द और सेल डीड। ऑनलाइन होगा आवेदन, 100 रुपए शुल्क देकर मिलेगा सत्यापित प्रमाण पत्र। हरियाणा की महिलाओं के लिए डेयरी क्षेत्र में 4 बड़ी घोषणाएं। वीटा को दूध बेचने पर 10 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हरियाणा में खेल प्रशासन में बड़े बदलाव की शुरुआत, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में पहली बार बनेंगे एथलीट महिला व एथिक्स आयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 100 नई

की दी जाएगी ट्रेनिंग, 3,000 फैंस के बैठने की क्षमता। पीयू में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित, 15-15 मिनट में देगा मौसम का डेटा।

0: वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 1.37 लाख लोगों को जाएंगे नोटिस, गलतियां दूर करने का मिलेगा मौका। पीजीआई में इलाज से पहले हो रहा पार्किंग टेस्ट। पार्किंग की बढ़ती मांग को देखते हुए 3 नई पार्किंग परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। मोहाली में नशा तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, सरेंडर करने के लिए कहने पर पुलिस पर चलाई गोली, गोली मारने वाले गोली मारकर पुलिस ने पकड़े। कल से पूर्णिमा श्रावण मास शुरू, पूर्णमासी सावन का विशेष महत्व, शिवालयों में शुरू होगी भोले बाबा की विशेष आराधना। चंडीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का लिया गया संकल्प। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी का होगा कायाकल्प, आधुनिक तकनीक के जरिए बनाया जाएगा इसे अधिक आकर्षक। शहर में जल्द ही 170 बस क्यू शेल्टर पर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा होगी उपलब्ध, दिखेगी बस की लाइव लोकेशन। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें ट्राई सिटी से। यहाँ लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद एक गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: तो दोस्तों ये तो था कार्यक्रम आज का अखबार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का भी रखें ख्याल और पर्यावरण की भी करें देखभाल, क्योंकि पर्यावरण रहेगा स्वस्थ तो तभी रहेंगे हम भी स्वस्थ। इन्हीं कामनाओं के साथ आपकी रेडियो संगनी बबीता कपूर लेती है कार्यक्रम में आपसे विदा। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में 10 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम के राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय

0: संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चेन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापक तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के बीच वार्ता का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा के दौरान दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन प्रक्रिया के विस्तार, लंबित सीमा विवादों के समाधान और पिछले महीने दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित ढांचागत समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में निहित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6 रह गई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप महानगर पालिका जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत आने वाले 631 गांवों में कुल 4,45,495 लोग प्रभावित हैं। हालांकि शहर के 10 बाढ़ प्रभावित वार्डों से अभी भी पानी पूरी तरह से नहीं निकला है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा। तो चलिए गाते और गुनगुनाते हुए करते हैं आगाज इस सुरीले सफर का। और आज के इस सफर में आपकी हम सफर रहेगी आपकी रेडियो संगिनी बबिता कपूर। साजन फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और ये गीत आपकी नजर।

जी हाँ, बेशक हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें यकीन है कि आप भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा अंतराल और प्यारे प्यारे गीत अभी बाकी हैं।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और कुछ गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है। आइए चलते हैं और सुनते हैं अगला गीत। चलते हैं मैंने कहा तो अगला गीत भी है चलते चलते फिल्म से। आवाज आप पहचानते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के बोल और संगीत, जतिन ललित का।

0: दोस्तों, एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, लेकिन आप दिल मत हारिए, हम बस यूं गए और यूं आए।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं हर एक रंग के गीत। तो चलिए अब पेश कर रहे हैं कव्वाली। इस्माइल आजाद कव्वाल और उनके साथियों की आवाजें।

आइए अब सुनते हैं सागर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। जावेद अख्तर के बोल और संगीत, आर डी बर्मन का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। सावन का महीना है, हालांकि जो मौसम है अपना रुख बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप, लेकिन फिर भी मौसम का मजा लिया ही जा सकता है।

अभी आपने गीत सुना आया सावन झूम के फिल्म से, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और बोल थे आनंद बख्शी के। चलिए अब थोड़ा सा रूमानी हो जाते हैं और सुनते हैं ये गजल आवाज गजल सम्राट जगजीत सिंह की।

बेशक सफर सुरीला सा कार्यक्रम के सभी गीत होठों पर सजाने लायक तो है ही। आइए अब सुनते हैं लोफर फिल्म का गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

मौसम में बेशक आज बड़ा बेईमान है और हमें उसकी इस बेईमानी से बहुत प्यार है। इस कदर प्यार है सोनू निगम की आवाज में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: कार्यक्रम सफर सुरीला सा में आइए अब सुनते हैं ये भक्ति रचना आवाजें हैं शर्मा बंधु की

हम सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी अभिलाषा है। और इसी अभिलाषा के साथ आपकी रेडियो संगिनी कार्यक्रम सफर सुरीला सा से लेती है विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुरीला सा। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आइए अब सुनते हैं स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम FM लाइफलाइन, PGI की डॉक्टर पूनम खन्ना से पोषण और स्वास्थ्य पर बातचीत।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
3: नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पूनम खन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGI चंडीगढ़। सबसे पहले डॉक्टर पूनम खन्ना, हम प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद।
3: और आप अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ वक्त निकाल कर आई हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि आज बैठे बिठाए, घर पे बैठे बिठाए हमारे श्रोताओं को आपसे जानकारी मिलेगी और लाभान्वित होंगे। और टॉपिक आपने जो चुना है वो चुना है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी पोषण और स्वास्थ्य। और डॉक्टर पूनम, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में हमने ये जान लिया है कि स्वास्थ्य से ऊपर और कुछ नहीं,
4: भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: अगर स्वास्थ्य है तो हम हैं, वरना नहीं है।
4: वरना नहीं है, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं।
3: हम जो खा रहे हैं वो क्या वाकई आहार है, वो भोजन है, उसमें पौष्टिकता है, तो असल में सही आहार क्या है?
4: देखिए, सही आहार वो है जिसमें आपके जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे आगे आयरन हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं, जब वो हमें उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिलते हैं तो हम उसको जो है वो पोषक आहार बोलते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में बैलेंस डाइट कहा जाता है।
3: डॉक्टर, हमारे श्रोता भी ऑनलाइन हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और साथ साथ में अपनी बातचीत को भी जारी रखेंगे। जी, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पूनम खन्ना इस वक्त मौजूद हैं।
5: हाँ जी डॉक्टर साहब।
3: और आज का टॉपिक आपको मालूम है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य। पहले अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से फरमा रहे हैं, आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम सीताराम बत्रा जी, मैं शाहबाद मारकंडा से बोल रहा हूँ।
3: जी सीताराम जी, आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में।
5: मेरी उम्र 64 साल है और मैं रात का खाना नहीं खाता, इससे मेरे स्वास्थ्य कोई असर तो नहीं पड़ेगा?
4: हाँ सीताराम जी, देखिए रात का खाना हमें खाना जरूर चाहिए, वो भी सोने से 2 घंटे पहले आपको ले लेना चाहिए। और यदि आप रात को खाना नहीं खा रहे हैं तो वो आपकी सेहत को इफेक्ट कर सकता है। रीजन, यदि आप रात का खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी को वो वर्कआउट करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है रात का खाना अवश्य खाएं और सोने से 2 घंटे पहले खा लीजिए। तो आप रात को 2 चपाती ले लीजिए, साथ में दाल हो गई, और सलाद जरूर आप लीजिए, और पानी का जो है वो उचित सेवन कीजिए, क्योंकि पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए।
5: मैं सुबह 5-6 गिलास पानी का जरूर पीता हूँ जी।
4: नहीं नहीं, आपको पूरे दिन में 8-10 गिलास लेने हैं।
5: 8-10
3: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल है आपका?
5: नहीं बस डॉक्टर यही पूछ रहा था
3: जी। जी जी, आप खाना जरूर खाएं, सोने से 2 घंटे पहले खा लें। जी
5: ठीक है।
3: शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर, अभी इन्होंने कहा कि मैं रात का खाना नहीं खाता हूँ, जबकि आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे जो डाइटिशियंस हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं,

0: वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप रात का खाना सूरज डूबने से पहले पहले खा लें।
1: देखिए, यदि मैं पुराने भारत की बात करूं तो लोग जो हैं वो सूरज ढलने से पहले खा लेते थे, लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में, क्योंकि हम 6 बजे तो दफ्तर से ही आते हैं, कई लोग 7 बजे भी आते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि रात का खाना जो है आप 2 घंटे से पहले जरूर खा लीजिए, पर खाइए जरूर।
0: तो डॉक्टर पूनम, अगर कोई सूरज ढलने से पहले पहले खा सकता है
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी, खा
0: क्या
1: सकता है।
0: उसका स्वास्थ्य पर अच्छा असर होगा?
1: हाँ जरूर, मतलब खाना तो खाना ही है, और अगर सूरज ढलने पे भी खा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको जो एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल गया, आपके डाइजेशन के लिए टाइम मिल गया।
0: मतलब वो रात के
1: हाँ
0: खाने में
1: जी,
0: माना जाएगा ना?
1: माना जाएगा, माना
0: जी।
1: जाएगा जी, माना
0: और
1: जाएगा।
0: जहां तक पानी की बात, आपने पानी बताया कि पीना चाहिए,
1: हाँ
0: दिन
1: जी,
0: भर तो पीना चाहिए,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, अदर देन एलोपैथ्स, कि भाई रात को पानी जो है वो कम से कम पिया जाए।
1: ओके देखिए, मैं पूरे दिन की मात्रा 8 से 10 गिलास, जैसे हम बोलते हैं, आपको पानी के पीने चाहिए। रात के समय हम ज़्यादा पानी इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई लोगों को जो है बार बार बाथरूम जाने की आदत होती है, तो यदि वो लिक्विड इंटेक सोने से पहले बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। तो आप खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद जो है 1 गिलास ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। अगर आपकी 8 से 10 गिलास की मात्रा पूरी हो चुकी है तो आपका 1 गिलास मोर देन
0: वो स्किप
1: सफिशियंट
0: कर
1: है।
0: सकते हैं
1: हाँ
0: आप?
1: जी, हाँ जी, वो
0: जी
1: स्किप कर
0: जी
1: सकते
0: और
1: हैं।
0: जब आहार की बात करते हैं तो आजकल विटामिन्स के बारे में, माइक्रो विटामिन्स के बारे में
1: हाँ जी,
0: इतना चारों तरफ शोर है कि बहुत सारी कंपनीज कॉमर्शियल बेस पर ये काम कर रही हैं और बार बार बता रही हैं कि अगर आप विटामिन्स ये नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी।
1: सही कह रहे हैं आप, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है खाने पीने को लेके, तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है।
0: माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
1: हाँ जी,
0: इसकी कमी क्या होती है और ये क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं?
1: ये
0: एक मिनट
1: माइक्रो
0: में आपको रोकूंगा, हमारे एक श्रोता ऑनलाइन है। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है।
2: जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर, गोपाल कृष्ण, चंडीगढ़ सेक्टर 20 से बोल रहा हूँ।
0: जी गोपाल जी, इस प्रोग्राम में आज डॉक्टर पूनम खन्ना हमारे साथ हैं
2: हाँ जी मैडम, हाँ जी
0: और
2: सर, हाँ
0: पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रही हैं।
2: जी
0: इससे
2: सर,
0: जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कीजिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी।
2: मैडम, न्यूट्रिशन कैसे होनी चाहिए? और कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद, इंटरवल के बाद कुछ खाना चाहिए। अच्छा,
1: ठीक
2: ऐसा
1: है,
2: भी सुनने में आया है कि कहते हैं कि 2 मील्स के बीच में 10-12 घंटे का इंटरवल होना चाहिए ताकि वो एक खाना अच्छी तरह हजम हो जाए, उसके बाद आप
1: हाँ
2: कुछ
1: हाँ हाँ
2: खाएं।
1: 10 से 12 घंटे आप शायद थोड़ा सा स्किप कर गए हैं।
2: हाँ जी,
1: मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमें छोटे छोटे 4 से 5 आहार लेने चाहिए, जिसमें कि आपका सुबह का नाश्ता आता है, दोपहर का खाना आता है, रात का खाना आता है, और बीच में आपका 11 बजे का समय होता है
2: हाँ
1: जिसमें
2: जी,
1: आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या आजकल देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जूसेस हम ले सकते हैं।
2: हाँ जी,
1: कैरेट का जूस है आपका, आंवला है, आंवले का जूस है, इस तरह के जूसेस का सेवन कर सकते हैं। फिर शाम को आप एक और आहार ले लीजिए जिसमें कि आपका चाय के साथ भुना हुआ चना हो जाएगा, इस तरह की चीजें आप ले लीजिए।
2: हाँ जी, अगर फ्रूट्स ले लें, सैलड ले लें,
1: हाँ जी,
2: तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं खाने का?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आप कहते हैं कि खाली मैं फ्रूट्स लूं तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स जो है वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं,
2: हाँ जी,
1: तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इसका सेवन कर रहे हैं।
2: हाँ जी,
1: लेकिन अगर आप एनर्जी डेंस डाइट नहीं लेंगे, आप अपने आहार में चपाती और चावल का सेवन नहीं करेंगे,
2: हाँ जी,
1: तो आपको जिस मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती है।
2: ठीक है
1: तो मैं
2: मैडम,
1: आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टेपल डाइट को हमें नहीं भूलना है, हमें उसको सपोर्ट करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट्स के साथ, जैसे कि आप बोल रहे हैं फ्रूट सैलेड ले लीजिए
2: हाँ जी,
1: या गाजर मूली, इस तरह के सैलेड्स आप
2: हाँ
1: कंज्यूम
2: जी,
1: कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ठीक है,
2: ठीक
1: फिर
2: है मैडम, ठीक
1: आप फ्रूट्स पे जोर दे सकते हैं।
2: है मैडम।
0: अब वैसे
2: मैडम,
0: गोपाल जी, बहुत कुछ है खाने को,
2: हाँ जी सर,
0: क्या क्या छोड़ेंगे, क्या क्या
2: हाँ जी सर, हाँ जी,
1: खाएंगे।
2: बिल्कुल
1: सही कह
2: ड्राई
1: रहे
2: फ्रूट्स
1: हैं।
0: है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सर।
0: और डॉक्टर पूनम, इससे पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे
1: हाँ
0: थे,
1: जी, हाँ
0: इनकी
1: जी।
0: आवश्यकता क्यों होती है और
1: देखिए
0: इनकी कमी से क्या होता है?
1: क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व हैं जो हमें थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। और जैसे मैंने जिंक की बात करी, तो कोविड काल में जो है बहुत सारी इम्यूनिटी की बात की गई थी, तो जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है।
0: डॉक्टर्स ने

0: विटामिन सी और जिंक जो है कॉम्बिनेशन लोगों को खिलाया।
1: हाँ जी हाँ जी, विटामिन सी भी एक उसमें से है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स की जब हमारी डिफिशेंसी होती है तो हमें जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे महिलाओं में जो है वो अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत है। अभी हाल ही में हमारे सर्वे हुए हैं जिसमें पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा 70% के आसपास रिपोर्ट किया गया है अनीमिया NFHS-5 के डेटा में। और चंडीगढ़ ने हालांकि इम्प्रूव करा है पर फिर भी उतना नहीं, औरतों में जैसे 60% है, तो वो भी मैं बहुत नहीं मानूंगी। इसके लिए हमें भी अभी भी लड़ाई जारी रखनी है। तो एनीमिया, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे बच्चों में दस्त लग जाते हैं या किसी और तरह की कुपोषण की समस्या हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने।
0: मतलब इनकी कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: एनीमिया इतना प्रचलन में क्यों है?
1: एनीमिया इतना प्रचलन में इसलिए है क्योंकि हमारी जो खान पान की आदतें हैं वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है कि कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया है कि हमें अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है और अपनी खान पान की आदतों को हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इससे एक प्रॉब्लम से जो है वो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है। इसलिए हमें खास तौर पे एनीमिया जो है अपने बॉडी में आयरन के लेवल्स को जो है वो रिटेन करके रखना है, वो बहुत ज़रूरी है।
0: आपने आदतें कहा,
1: हाँ जी,
0: वो कौन कौन सी आदतें हैं आपकी नज़र में जो ये सब सिस्टम को खराब किए हैं?
1: आदतें तो सबसे पहले ये है कि हमारी जीभ का स्वाद, हमें बहुत बढ़िया बढ़िया तेल में तला हुआ चाहिए, जंक फूड चाहिए, मैदे से युक्त आहार जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस तरह के आहारों पे हमें बेसिकली रोक लगानी पड़ेगी और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे अगर केक हम खाते हैं, ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने केक खा लिया, लेकिन यदि वही केक जो है आपने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर लिया तो आपको जो है वो हेल्दी केक मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक शो देख रही थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गुड़ का और तिल को मिला के जो है एक केक को तैयार करा था जो खाने में भी अच्छा था और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा था। तो हमें चेंज करना, हमें बदलना पड़ेगा बेसिकली अपने आप को, और तभी संभव है कि हम इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जैसे एनीमिया की आप बात कर रहे हैं, पिछले 50-70 सालों से हम लगे हुए हैं लेकिन एनीमिया का हम वो लेवल नहीं अचीव कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए।
0: अच्छा, एनीमिया के बारे में आप बात कर रहे थे, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर शुरू हुए थे।
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ
0: एनीमिया
1: जी
0: तक की बात अभी चल रही है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: एनीमिया की बात हम आगे करेंगे, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
1: हाँ जी,
0: हमें
1: हाँ
0: हमारी दिनचर्या में मिलते रहें,
1: हाँ जी,
0: उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है?
1: देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट सुबह से लेकर शाम तक लेने के लिए मैं आपको इमीडिएट टिप्स देती हूँ। जैसे सुबह आप जो है शहद और नींबू, लोग जो है वैसे तो वजन कम करने के लिए करते हैं लेकिन वो डिटॉक्सिफाइंग डाइट हो जाती है, तो आप नींबू शहद का कोसे पानी में जो है वो सेवन कर लीजिए। इसके अलावा आजकल जो है स्पिनेक का सूप, जिसको कि हम पालक बोलते हैं, पालक का सूप लीजिए आप। साग जो हमारा पंजाबी तरीके से बनता है वो तो क्या मस्त होता है, आप वो साग खाइए दिन में एक बार या हफ्ते में एक आधी बार खा लेंगे तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। और एक और मैं कहना चाहूंगी, आप गाजर, चुकंदर, आंवला और संतरा और बीट रूट जिसको हम कहते हैं, चुकंदर होता है वो, इन सबको मिक्स करके आप जो जूस पीते हैं वो आपको आयरन से ही नहीं बल्कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाता है, और प्लीज़ आप उनका सेवन कीजिए। यदि रस की मशीन आपके पास नहीं है तो इनको रॉ फॉर्म में खाइए, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनार के रस की जगह अगर आप साबुत अनार खा लेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है, उसके बीज के साथ आप खाते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है।
0: बहुत अच्छी बातें आप बता रही हैं, बल्कि स्वाद आ रहा है इन बातों को सुनकर।
1: थैंक यू सो मच।
0: और आपने जो ये कॉम्बिनेशन बताया है,
1: हाँ जी,
0: आंवला, संतरा,
1: चुकंदर, गाजर
0: और गाजर का, हाँ ये तो वाकई बहुत टेस्टी इसका रस बनता है,
1: इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं और बहुत फायदे हैं।
0: डॉक्टर, एक और हमारे श्रोता ऑनलाइन है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। जी
2: नमस्कार जी, सर जी।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: कश्यप बोल रहा हूँ जी, बराड़ा से बोल रहा हूँ जी, डिम्पल कश्यप।
0: बराड़ा से डिम्पल कश्यप फरमा रहे हैं, स्वागत है आपका डिम्पल जी।
2: थैंक यू सर।
0: और आज हम पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे हैं, डॉक्टर पूनम खन्ना हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। आप भी पूछ लीजिए अपना सवाल।
2: डॉक्टर पूनम जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
2: मैं डिम्पल बोल रहा हूँ बराड़ा से। दिनचर्या में जो अपना स्वास्थ्य बढ़िया से बढ़िया रखना हो।
1: हाँ जी,
2: जैसे अभी मेरी

0: थे और मेरे पापा थोड़ी उम्र हो गई है 60 के आसपास, तो वो कई बार उनको दिक्कत आती है एनर्जी में.
1: ठीक है,
0: तो दिनचर्या में ऐसा क्या खाना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए जो कि अपना स्वास्थ्य ठीक रहे.
1: ठीक है, आपके पेरेंट्स की आपने जैसे कि बताया 60 साल से ऊपर की उम्र है, उनको किसी तरह के दांत के इशू तो नहीं है, दांत वगैरह का कोई दिक्कत तो नहीं है
0: क्या मैडम आपकी आवाज,
2: मतलब चबाने में उनको दिक्कत तो नहीं है.
0: नहीं मैडम नहीं है.
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए बस एक सादा उपाय है, एक तो आप उनकी 8 से 10 ग्लास पानी फ्लूइड इंटेक बढ़ा दीजिए. फ्लूइड इंटेक में आपका, हाँ पानी
0: मैडम आपकी बात रोक रहा हूँ मैं मैडम, उनके ना पेट में ना पीछे से अभी थोड़े दिन पहले ना दर्द रहती है, काफी दिन पहले दर्द रही है, तो अच्छा दवाई तो चल रही है.
1: ठीक है, देखिए जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उनको पेट का दर्द है, यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी को किसी तरह की समस्या है तो सबसे पहले तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि अंदर किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है.
0: डॉक्टर कह रहे थे उसमें पानी सा कुछ पड़ गया पेट में, कोई पानी सा इकट्ठा हो गया ऐसे कह रहे थे कुछ.
1: ओके ठीक है, इसका मतलब कि उनको इन्फेक्शन की दिक्कत ज्यादा है, तो आप उनके आहार में ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी रिच जो है वो डाइट ऐड कीजिए. जैसे कि मैंने बताया है आप गुनगुन पानी में नींबू पानी उनको दे सकते हैं, सब्जियां खा रहे हैं उसमें नींबू निचोड़ के दे दीजिए, या आप एक आंवला दे दीजिए, इस तरह की चीजें विटामिन सी युक्त आप देंगे तो इम्यूनिटी में लाभ होगा उनकी.
0: मैडम जी मैं भी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल कर सकूं खाने में,
1: ज्यादा से ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल कर सके. आपकी उम्र कितनी होगी.
0: मेरी 45 के आसपास है.
1: 45 के आसपास है. एक तो आपने जो है 3 टाइम का जो हमारा खाना है वो तो आपने प्रॉपर लेना ही लेना है. इसके अलावा आपके आहार में जो है स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, आजकल गुड़ बहुत है जी, गुड़ में बहुत अच्छा आयरन मिलता है, आप गुड़ चना का सेवन कर सकते हैं, चिक्की खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को ले सकते हैं. और सूप ज़रूर लीजिए, अपने पेरेंट्स को भी जो है सूप बना के दीजिए. सूप उनको हल्का दाल का सूप हो गया या फिर मिक्स वेजिटेबल, इस तरह के सूप आप दे सकते हैं. भारी सूप मत दीजिए जैसे चिकन और चने का होता है, क्योंकि वो कई बार जैसे बोल रहे हैं पानी वगैरह भरा हुआ है पेट में, तो वो दिक्कत दे सकता है.
2: शुक्रिया डिंपल जी आपका बहुत बहुत बात करने के लिए.
0: थैंक यू सर, थैंक यू.
2: डॉक्टर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि अगर हम जूस बनाकर पीते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है,
1: उससे निजात पाई जा सकती है. डेफिनेटली
2: दिन में एक गिलास काफी है.
1: हाँ दिन में एक गिलास बहुत है.
2: और इसके साथ साथ ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए.
1: हाँ जी, हाँ जी.
2: और बहुत सारी चीजें चाहिए उनके लिए. जो बैलेंस डाइट आपने बताई थी,
1: हाँ जी.
2: उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सुबह कैसी हो, दोपहर कैसी हो, और जो शाम या रात को.
1: आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं ऐसे करती हूँ जैसे हमारे आप डाइट क्लिनिक में जाते हैं या किसी आहार विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो मैं आपको एक सैंपल प्लान बताना चाहूँगी. आप सुबह की शुरुआत कोसा पानी, कई लोग अजवाइन के साथ लेना चाहेंगे तो आप अजवाइन के साथ ले सकते हैं, या फिर आप नींबू और शहद
2: कुछ के साथ जीरा भी इस्तेमाल करते हैं.
1: हाँ जीरा भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सुबह लीजिए. उसके बाद आधे घंटे के बाद आप चाय के साथ रस या बिस्किट ले लीजिए. चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों को जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो उससे निजात पा सकते हैं. अब आ जाता है नाश्ता. नाश्ते में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप कम तेल में तला हुआ परांठा खा सकते हैं, स्टफ्ड मिसी रोटी खा सकते हैं, आजकल हमारे पास पालक है, हमारे पास मेथी है, आप बेसन का आटा और सोया का आटा और कनक का आटा मिक्स करके आप चपाती बनाइए, बहुत स्वाद बनती है, और एक कटोरी दही के साथ खा लीजिए. और अगर किसी का देसी घी की तरफ रुझान है तो वो थोड़ा सा देसी घी ले सकता है, अगर उसको हाइपरटेंशन या थोड़े कार्डियक इश्यूज नहीं हैं तो. अब नाश्ता करने के बाद आप 11 बजे के आसपास क्या खाना पसंद करेंगे. हम जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जूस, चुकंदर, गाजर, ऑरेंज एंड बीटरूट को मिक्स करके, और एक और चीज मैं भूल गई हूँ अभी, आप मुझे याद कराना चाहेंगे.
2: संतरा. संतरा,
1: हाँ जी, तो इनका आप जूस ले सकते हैं इस टाइम पे,
2: या कीनू या
1: हाँ,
2: संतरा,
1: कीनू या संतरा, हाँ कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. अगर नहीं मन है तो आप 2 गाजर खा लीजिए, चलते चलते खाई जाएगी. और फिर दोपहर का खाना जो आप घर में बनाते हैं वो लीजिए. कोई स्पेशल आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि जो हम पहले से खा रहे हैं उस आहार को हम पौष्टिक आहार बना के, जैसे मैंने आपको भी टिप्स दिए,

0: कि मेथी आप ऐड कर सकते हैं, आप पालक का ऐड करके मिस्सी रोटी जिसको हम कहते हैं, उस तरह की रोटी आप बना के खा सकते हैं। फिर शाम के टाइम पे आप दूध ज़रूर लीजिए, मैंने दूध की बात नहीं करी है। दूध से हमें कैल्शियम मिलता है और दूध युक्त आहार जो है वो भी हमारे दिनचर्या में होने ज़रूरी हैं,
1: और
0: जैसे
1: दही
0: पनीर हो
1: भी,
0: गया, दही
1: छाछ
0: हो
1: है।
0: गया, छाछ हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हमारे जो है आहार में दिन में दो टाइम तो ज़रूर हमें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियाँ तो तभी मजबूत होंगी ना जब कैल्शियम खाएंगे। और जिनको मौका मिलता है, मैं कहती हूँ धूप ज़रूर सेकिए, क्योंकि इससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए धूप जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पीजीआई में एक स्टडी भी हुई थी, हो रही है इनफैक्ट, उसमें हमने पाया है कि बच्चों में विटामिन डी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। तो इसका कारण यही है कि बच्चे अब धूप में खेलना बंद कर चुके हुए हैं, मोबाइल फोन्स एंड ऑल की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। मैं कुछ
1: इंडोर
0: ज़्यादा तो
1: गेम्स में
0: नहीं बोल
1: लगे।
0: रही
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: हूँ
1: सही कह रहे हैं आप।
0: मुझे लग रहा है मैं
1: नहीं
0: आपको
1: नहीं
0: बोलने का मौका
1: बहुत
0: ही
1: नहीं
0: नहीं
1: नहीं कोई बात नहीं, ये
0: दे
1: आज आपके बोलने का समय है।
0: ओके, थैंक यू सो
1: मेरा तो
0: मच।
1: केवल पूछने का समय है।
0: मुझे आप बता दीजिएगा, जब मुझे
1: मुझे
0: रुकना होगा इशारा कर
1: खुद भी
0: दीजिएगा।
1: अच्छा लग रहा है, आप इतनी अच्छी
0: ओके
1: जानकारी
0: ओके
1: दे रही हैं।
0: ओके, देन इट्स ओके, आई
1: तो
0: फेल्ट
1: मैं
0: कि
1: आपसे ये जानना चाह रहा हूं डॉक्टर पूनम, कि कुछ एक जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, डाइट के मामले
0: हाँ
1: में,
0: जी
1: उनमें से एक एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो आपके दादा दादी,
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: आपके नाना नानी
0: हाँ जी
1: खाया
0: हाँ
1: करते थे,
0: जी
1: वैसी ही डाइट आपको खानी।
0: हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली
1: ये
0: है,
1: सही है कि
0: बहुत अच्छा सही है, क्योंकि दादा दादी खाते क्या थे, स्टेपल डाइट, गेहूं, चावल, मिलेट, आजकल आपने मिलेट का सुना होगा,
1: जी, बाजरा,
0: बाजरा,
1: ज्वार,
0: कंगनी, ज्वार, और
1: जौ,
0: ये आपके स्वांग के चावल आप लोग व्रतों में खाते हैं, हाँ, जौ हो गया, ये सारी चीजें जो हैं
1: अच्छा
0: इनसे
1: डॉक्टर साहब ये बताइए, इनको मिक्स करके खाया जा सकता है या अलग अलग खाना है?
0: देखिए, कई लोग जो हैं, क्योंकि हम बचपन से ही जैसे आटा और मैदा ही खाते जा रहे हैं, तो हमारा टेस्ट और हमारे पेट को यही खाने की आदत पड़ गई है। तो बाजरा वगैरह का, यदि हम मिलेट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं अपने डाइट में, तो आप इसको मिक्स करके जो है आटे के साथ मिक्स करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो बाजरे की रोटी वैसे भी बहुत स्वाद लगती है, मैंने अपने बच्चों को खिलाई थी तो दे
1: जी
0: लाइक्ड इट रियली, दे रैलिश, दे सेड कि मम्मा ये तो बहुत अच्छी रोटी है। तो आप भी ट्राई कीजिए, मुझे लगता है सबको बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए ये बाजरा की रोटी और मिलेट्स का। जैसे रागी है, रागी में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, और आप रागी से बने लड्डू खा सकते हैं। आप पिन्निया बनाते हो यार, पिन्निया, पिन्नियों में आप रागी डाल दो, मतलब आपको मिक्स करना है, मिक्स करके आप फायदा उठा रहे हैं, मतलब
1: बाजरा, मान
0: ठीक
1: लीजिए
0: है
1: बाजरा और गेहूं अगर मिक्स करना है
0: ठीक
1: तो
0: है।
1: उसकी रेशो क्या होनी चाहिए?
0: बाजरा और गेहूं को यदि आप मिक्स करना चाहते हैं, तो आप एक कटोरी आप आटे की ले लीजिए, और शुरुआत में कहना चाहूँगी कि 1/4 जो कटोरी है वो आप बाजरे की डालिए। जैसे ही आपके परिवार वालों को 1/4 अच्छा लगता है तो आधे पे आ जाइए, और जब वो आधा खाना शुरू कर देते हैं फिर स्मार्टली आप उसको एक रोटी पे आ जाइए, फिर बाजरे की रोटी खिलाइए। हफ्ते में 2 दिन बाजरे की रोटी और 4 दिन कनक की रोटी, मिस्सी रोटी, बहुत सारी रोटी हैं, बहुत सारे परांठे हैं, बहुत कुछ है, मतलब मेरे को तो भूख लग पड़ी है आपसे बातें करते करते।
1: जी, तो डॉक्टर पूनम देखिए बातें बहुत सारी हैं और प्रोग्राम
0: ये
1: का समय भागा जा रहा
0: हाँ
1: है,
0: भागा जा रहा है, सही बोल रहे
1: तो
0: हैं।
1: अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपने एनीमिया की बात की
0: हाँ
1: थी,
0: जी हाँ जी,
1: और एनीमिया होता है आयरन की
0: कमी
1: कमी
0: से,
1: से,
0: हाँ जी
1: तो आयरन की कमी, अब तो बहुत सारी जागरूकता है, फिर आयरन की कमी इतनी क्यों है और आयरन की कमी को दूर कैसे किया जाए?
0: देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आयरन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस भी दे रही है, पर दिक्कत ये है कि हमने तो दे दिया महिला को, महिला ने उसे खाया नहीं खाया, तो यहाँ पे
1: ये कौन चेक
0: कंप्लायंस जिसको
1: करेगा?
0: हम बोलते हैं
1: हाँ
0: वो क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं सभी महिलाओं को इस प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहती हूँ कि वो टाइम टू टाइम जो है अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं, और अपने आहार में जो है आयरन युक्त भोजन जो है वो ज़रूर उसका सेवन करें। और यदि आपके एनीमिया के लेवल्स कम हैं तो आप किसी भी क्लिनिशियन से जाके जो है वो मेडिसिन लिखवा लीजिए आयरन की, और वो गोली खाइए। यदि आप सरकारी सिस्टम में हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँगी संघोल विलेज में मैं जाती थी, वहाँ पे स्कूलों में मुफ्त मेडिसन्स मिलती हैं, आंगनवाड़ी में मुफ्त मेडिसन्स मिलती हैं, तो इस तरह की जो फ्री अगर सरकार आपको दवाइयाँ दे रही है तो उसका सेवन कीजिए। हाँ, वो दवाई जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में लीजिए, और नींबू पानी के साथ उसका सेवन करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हम कहते क्या है, वी हैव एविडेंसेस कि आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन सी से बहुत अच्छी होती है।
1: ये बात नोट करने वाली है कि आयरन

0: एफिशिएंसी की जो टेबलेट लेनी है,
1: हाँ जी,
0: वो नींबू पानी के साथ लेनी,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो मुझे आपसे ये जानना है कि आयरन फोलिक एसिड IFC,
1: हाँ जी,
0: ये क्या है और इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती
1: है? नहीं, आयरन फॉलिक एसिड जो है वो हम गर्भवती महिलाओं को तो देते ही हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यदि किसी के एनीमिया के लेवल जो हैं, अगर एक आम महिला के भी कम है, तो भी उनको आयरन फॉलिक एसिड जो है, दवाइयाँ जो ये मिलती हैं, मेडिसिन, सप्लीमेंटेशन, मेडिसिन नहीं बोलूँगी, ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है, और 4 महीने तक आपको लेना ही लेना है, ताकि कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि थोड़े दिन खाती हैं, 10 दिन खाया, 12 दिन खाया, उन्हें लगता है यार मैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, छोड़ देंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने खाएंगी, तो प्लीज़ 4 मंथ्स के लिए एटलीस्ट इनको जो है आप कंज्यूम कीजिए, और अपनी डाइट को ज़रूर जो है वो भी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि डाइटरी जो सोर्सेज से आपको आयरन मिलेगा वो तो मिलेगा ही, वो आपका कहते हैं कि एंड आखिर तक आपके काम आएगा। IFA टैबलेट जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी कि आप अपनी जो उतरी हुई पटरी है उस पे वापस आप
0: ट्रैक पर फिर से आ जाए,
1: हाँ जी, वापस,
0: और जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है, जितनी देर के लिए कहा है,
1: हाँ जी,
0: आपको उसका सेवन करना है,
1: डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है आपने, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो हैं अपनी मर्जी से दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज आप एक बार जो है डॉक्टर के पास जरूर जाके उचित सलाह लीजिए, और फिर
0: जो नजदीक आपके स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ये सारी सुविधाएं
1: उपलब्ध है, हाँ जी, हाँ जी, मुफ्त उपलब्ध है जी।
0: और अब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं,
1: हाँ जी,
0: और सप्लीमेंट का भी मार्केट में बहुत शोर है,
1: हाँ जी,
0: कि आप विटामिन डी नहीं लेंगे, सी नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे,
1: हाँ जी,
0: जो आम व्यक्ति है,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: उसको लगता है कि हो सकता है कि जो मैं डाइट ले रहा हूँ, चाहे वो डाइट अच्छी ले रहा है, हो सकता है जो मैं डाइट ले रहा हूँ उसमें वो सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा है,
1: नहीं मिल रहा है,
0: क्या सप्लीमेंट लेने उचित हैं? अगर उचित हैं तो मात्रा कितनी चाहिए?
1: ओके, ठीक है, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है। सप्लीमेंट्स लेना जो है वो डिपेंड करता है कि आपका करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस क्या है। यदि तो आप बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह है कि उस सप्लीमेंट को लिया जाए, तो आप ज़रूर लीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, और सप्लीमेंट्स कम से कम लें, मैं तो यही कहूँगी। उसकी जगह अगर आप अपने दिनचर्या का ही सुधार कर दें और अच्छा आहार खाएं, जिसमें कि आपके सलाद हो, सब्जियां भी हो, फल भी हो, दालें भी हो, मिलेट भी हो, चावल, गेहूं, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें हो, यदि आप रूटीन में खा रहे हैं तो आपको इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है
0: जी। और 3 सफ़ेद जो हैं वो कम कर देने चाहिए?
1: 3 सफ़ेद? नहीं, 3 सफ़ेद नहीं, वो तो नहीं कम
0: करते।
1: अच्छा, ये वाले सफ़ेद, मैं हैरान होगी, मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ दूध दही और छाछ की,
0: नहीं,
1: और आप उन 3 सफ़ेद को बोल रहे हैं
0: 3 सफ़ेद के बारे में भी बहुत बात होती है,
1: हाँ जी,
0: उसमें आपका वाइट नमक है,
1: हाँ जी, हाँ,
0: और वो मैदा है,
1: हाँ जी,
0: एक
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, आपकी
1: चीनी, हाँ, चीनी, हाँ, ये हमारा जो है गवर्नमेंट FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ईट राइट इनिशिएटिव जो है वो शुरू करा है, जिसमें वो बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, इवन हम भी पार्ट हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के साथ, और उसमें हम कहते हैं थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक एंड मैदा, मैं अपने आप से ऐड कर रही हूँ, और मैदा बिल्कुल थोड़ा, बिकॉज मैदे से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं।
0: तो डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और दिल तो करता था कि आपसे और बातें करें, आपसे और
1: मुझे भी
0: पूछें।
1: बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट
0: लेकिन प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है,
1: ठीक है,
0: जाने से पहले आप कोई संदेश देना चाहें?
1: जाने से पहले मैं यही सबको संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपने आप को और अपनी सेहत को समझना होगा। इसके लिए अच्छा खाना, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, बिकॉज हम भाग रहे हैं तो किसके लिए, अपने लिए ना, तो अगर सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो उस भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ दबा के खाइए, पौष्टिक खाइए और तंदुरुस्त हो जाइए, यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। थैंक यू सो मच।
0: और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए,
1: हाँ जी, जरूर दिखाना है, और कोई भी सप्लीमेंट जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए, क्योंकि कई बार ये सप्लीमेंट्स ज्यादा मात्रा में खाने से भी हमारी सेहत को कई तरह की बीमारियां जो है वो लग जाती हैं।
0: और डॉक्टर पूनम खन्ना, आप हमारे स्टूडियोज में आई, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और पता चलता है कि वाकई आपने कितनी मेहनत की अपने सब्जेक्ट को लेकर, लोगों को आप लाभान्वित कर रही हैं, बैठे बिठाए हमारे श्रोताओं को यहाँ जानकारी मिल गई है। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, ये तो था आज का FM लाइफलाइन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर पूनम खन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI चंडीगढ़। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी सितेश मिश्रा ने। अनिल पुंज को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात एक और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम FM लाइफलाइन, FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ Sector 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हे मित्रां दे।
5: सुने हे मित्रां दे, त्वाड़े दिल खिचवे सुने हे, त्वाड़े दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल।
2: इस पंजाबी फोन इन प्रोग्राम द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर वालों तो सारे नू प्यार परी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और सुनाओ दोस्तों, की हाल चाल है? हमेशा वांग अज भी साडी वाहिगुरु अगे ही अरदास है कि तुसी चढ़दी कला छोवो। हुण इस तो पहला कि असी तुहाडे सुनेहे अपने सुनन वालियां तक पहुंचाइए, आकाशवाणी चंडीगढ़ का एक सुनेहा अपने प्यारे स्रोतियां दे नाल। दोस्तों, ड्राइविंग करदिआं हमेशा ट्रैफिक दे नियमां दी पालना करो। बिना वजह हॉर्न ना बजाओ। स्लिप रोड नू कदी भी ब्लॉक ना करो। रेड लाइट कदी भी पार ना करो। ड्राइविंग करदिआं मोबाइल फोन दा इस्तेमाल ना करो। नशा करके ते तेज रफ्तार नाल ड्राइविंग ना करो। हमेशा सुरक्षित ड्राइविंग करो। स्कूटर मोटरसाइकिल चलांदिआं सिर ते हेलमेट जरूर पाओ ते कार च सफर करदिआं हमेशा सीट बेल्ट लगाओ। याद रखो, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ। ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
6: ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
6: ਸੋਮ ਦੱਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ।
2: ਜੀ ਸੋਮ ਦੱਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
6: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ।
2: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਉਧਰ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ?
6: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਨੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5-7 ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।
2: ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
6: ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਤ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ।
2: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
6: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6: ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨਾ

0: दोस्तों जी तो बहुत करता की थोड़ी गल्ला बातें सही तरह चलदी रहन पर समय हथों असी मजबूर हाँ। हूँ अज का सुनेहे मित्रां दे प्रोग्राम खत्म करन दी अपने दोस्त रमेश कपूर नूं इजाजत दिओ। प्रोग्राम दी अगली कड़ी च अगले मंगलवार दिने 11:30 ते तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी। तद तक लई रब राखा।
1: सुनेहे मित्रां दे तुहाडे दिल खिचवे सुनेहे, तुहाडे दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल।
0: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
3: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
2: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने

0: पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

खिलाड़ी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। अनवर सागर ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी ने से लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।

0: ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म दिल से।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट,

0: नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी।

0: लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर।

कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेल्यूलॉयड के सितारे। इस कार्यक्रम में गीतकार आनंद बख्शी के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी से यूनस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। जयमाला ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे नाटिका सुनिए बस की सीट।

कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 बजे, रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री कुमकुम को पर केंद्रित रहेगा।

0: चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
2: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज परिणाम दुनिया देख रही है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, किसानों की आय बढ़ाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गांवों में सांझी डेयरी स्थापित करने सहित 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। पंचायती भूमि पर सांझी डेयरी स्थापित करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सामुदायिक डेयरियों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के पशुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पशुपालन की लागत कम होगी और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ HDDCF, महिला स्वयं सहायता समूह और महिला CM पैक्स की सदस्य महिलाओं को दुग्ध पशु खरीदने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करने तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ HDDCF को दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा भी की। ग्रीष्मकाल में प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर तथा शीतकाल में 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये निर्णय ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे और हरियाणा को डेयरी विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली को उनके पद का कार्यभार ग्रहण करवाया। मुख्यमंत्री ने श्री मोहन लाल बड़ौली को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बड़ौली अपने अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकुशलता के बल पर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा जनहित एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रदेश में चल रही विभिन्न भवन एवं सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गंगवा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित

0: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾਥਲੀਟ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਤਨਖੜ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟ F57 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 9.8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ xhandle@airnew ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़, Sector 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172।
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं राज फिल्म के गीत से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, शब्द रचना शमीम जयपुरी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

जानी दुश्मन फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। गीत को लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इंतकाम फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीत को लिखा है रजिंदर कृष्ण ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इन तमाम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानु मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानु स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। योगेश ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। और मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ। और एक वादा विविध भारती के साथ किया है, सदा साथ रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें, और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है, और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफर में 25 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार, 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पट ब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूंगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा, क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो जरूर रहना चाहिए लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है कभी धूप भी आ रही है और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत सफर में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: चलिए।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
3: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
3: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
3: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ, आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक

वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है अपनों के लिए, यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं, लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत है उनका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफर का मजा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफर में जो है इंटरनेट महाराज आंख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत।

कारवां फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफर की वादा से, और अब खत्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थी

0: को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी,

0: लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उन पे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक

0: मानसिकता के अफसोस को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तेरा ओड़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मंत्र फेरू कोमल काया छोड़ के डारे

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंदनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला अच्छा सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए। हाँ, और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
2: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों की नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई

0: का ही उपयोग करें। और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं।
1: ये तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन जिसको कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना, इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जांच और टीकाकरण कराना और बहुत जरूरी है।
0: तो आरती कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें। और चलते हैं हम लोग गीत की ओर, थोड़ा मौसम
1: गीत सुन लेते हैं।
0: गीत की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में
1: जी। तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जाने बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं, तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में. तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई. अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं. भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है. गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है.
1: बिल्कुल. और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से, जो नवाचार वही जो इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है. और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में, और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है. इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है. AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल है.
0: बिल्कुल. और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यह है कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं. तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं, इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी. तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें.
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके.
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत.

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो कल्पना करो क्या होगा, है ना।
6: इंसान तो नहीं रह सकता,
5: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है, कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
6: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
5: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन

0: ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
0: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीज़ें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है। चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, एक वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
1: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने,
0: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखें, एक नन्हा सा पौधा तैयार होगा,
1: जो बहुत खुशी मिलती,
0: बहुत खुशी मिलती जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार कराएगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम,
1: बताओ? सूख जाएगा वो जो हमने लगाया, बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
0: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
1: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
0: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
1: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
0: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं आरती
1: उनको देख देख के
0: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भी इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे को साथी जो हमें वही चीज बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी कि जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया। हाँ। तो इस वजह पे।
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता।

0: तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक और सेक मतलब मैं कहती सही सीखी है। टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक। तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी। शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस। लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते। लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे। वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
0: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था, और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूँगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज़्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हों या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर और झगड़े भी। लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और

0: फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्यौछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें

0: अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बात होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता, तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो
0: है ना।
1: है।
0: तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते, लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था। एक ही थाली में खाना खाते, दाल ख़त्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े। और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो है, ये थी खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है। लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह। अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मज़ेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी। एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, उससे कमजोर हूँ। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूँ।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखती है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज़ का इंतज़ार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
1: जी तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए, तो बिल्कुल प्लीज कल उनको खाना दीजिए।
0: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए। और एक साथी लिखते हैं पेट में चूहे दौड़ना बेहद भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
1: और जो एक और मैं श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
0: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज्यादा थी, मैं अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
1: मैं

0: नहीं। पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
1: अरे खूब वाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंसी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
0: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956, व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़िया पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
0: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
0: पिताजी के लिए नसीब,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर।
0: ये
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
0: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
0: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
0: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
0: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
0: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
1: 13 साल 14 साल।
0: जी जी।
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
0: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाई करोगे ना, उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
0: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
1: अलग अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
0: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ, वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
0: हाँ।
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है?
0: जी जी,
1: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है, मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
0: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है, तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
0: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
0: कृष्ण का, नहीं क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
1: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
0: हाँ,
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
0: वाह,
1: लाइन है यार, आप सोचो।
0: वाह वाह,
1: क्या कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका मेरा होता।
0: क्या
1: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
0: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना। यार तो मेरे जैसा है, अपना जैसा यार।
0: वाह वाह वाह वाह।

0: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है,
1: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा,
0: बहुत गहरी बात है।
1: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने, मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है, यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी। तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
0: मुस्कुराने चले थे मगर रो पड़े।
1: तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए, गिवेंडन टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया। तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स। प्रोड्यूसर को बोला है, सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस, वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
0: साउथ की फिल्म थी।
1: ही वांट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वांट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दे आर नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो,
0: क्या
1: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक टिकट चेकर ने

0: पकड़ लिया।
1: अरे कमाल है वो तो।
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है। कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के? मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो? वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है? सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया। 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
0: बोरीवली में।
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए।
0: तो
1: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए।
1: हाँ
0: अब एक आसरा हो गया।
1: हाँ
0: यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था।
1: हाँ,
0: मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे देते, आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को। बहुत कोशिश की, रोशन आपको नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे। यू अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 1956 रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोला सर आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर। तो वहाँ चले गए और ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोले मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
0: पागल हो
1: गया, बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
0: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
1: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
0: क्या बात
1: है, एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
0: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू होता है
1: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
0: जी
1: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
0: सोचिए कि शकील के नगमे थे, तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
1: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में, जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकेंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
0: वाह वाह।
1: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया,

0: मेरे को लगा बख्शी आपने गाना लिखना है, भूल गए। लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
1: कितनी
0: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
0: दे वर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी
2: आया है मुझे फिर याद वो जालिम।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: टोलिनो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजित स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजित स्टूडियो गए, और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्म स्थान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्म स्थान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया था निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन

0: पहुंच गए वापस। बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है। इनिंग आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले। बोला हाँ लिख के ले। सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल। पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोला वाह तो बाकी के तीन गाने लिखो, इसी से लिख के लाया।
1: अरे
0: तीनों का चारों गाने लिख के लाया। चारों गाने लिख दिए तुमने?
1: जी
0: हाँ। सुनाओ। सुना रिकॉर्डिंग होगी उसकी।
1: वाह वाह।
0: एक महीने में चारों गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकलने देंगे। ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली।
0: उनकी पहली हिट थी।
1: जी
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा।
1: हाँ
0: उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे लेकिन
1: एक दो गाने थे।
0: हाँ
1: हिमालय की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था।
1: जी
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको हाँ, मौका दिया था
0: हाँ। और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले
1: हाँ,
0: सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती है नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: हूँ। कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माय गुड्स, व्हाई विल ही बाय माय गुड्स अगेन? मैं 50 एंट्री लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत।
0: तुम्हें 3 मांगा ना, 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3, 4, 5 अंतरे लिखते थे वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब होंगे जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरीक्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरीक्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर आन बख्शी वॉज, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक

0: वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तो मैं इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्हें ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।
2: मुबारक हो सबको समाए सुहाना।

0: क्योंकि बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट है मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपये का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ। बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो मिस्टर रबीश शेट्टी नो के नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, RD पे डाल दो, LP पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ, तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये

0: मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करेसोर वो फकीर गा रहा था
1: जी,
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर,
4: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
3: पवन

0: चीज़ आपकी सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका जो क्रेडिट है ना इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो तो अगर यूनुस खान अगर वहाँ का टॉप जॉकी है तो आप यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग तो उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनको तो उर्दू वाज़ द सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें उसको गाएं भी, तुम उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया। ये सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर आनंद बख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी, शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
3: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और UPA शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर

0: राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं बिच्छू फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं जसपिंदर नुरूला और हैरी आनंद की।

लीजिए दोस्तों, आप सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत अक्सर फिल्म से। गीतकार समीर, संगीत हिमेश रेशमिया का, आवाज़ हिमेश रेशमिया की।

लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से, गीतकार समीर, संगीत विजू शाह का, आवाजें हैं अमित कुमार, उदित नारायण और अलका याग्निक की।

आपने सुना गुप्त फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति, हेमा सरदेसाई और चेतन शशिताल की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के।

0: ये और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
1: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
1: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
1: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
1: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
1: जी। श्रोताओं एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
1: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित।

0: हाँ तो बच्चों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब। मैं लता से पूछ रही हूँ लता ही जवाब देगी। हाँ लता बताओ बेटा तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे

0: काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते
1: नमस्ते बहन जी।
3: नमस्ते शिखा।
4: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते, यहाँ बैठिए
3: जी।
4: यहाँ आज कैसे गरीबों के घर आपने।
3: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी।

0: नमस्ते शिखा।
1: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
2: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, यहाँ बैठिए
2: जी
1: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
2: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
1: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
2: हाँ ये तो है।
1: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
3: राम राम दादा।
4: हाँ,
3: कैसे हैं आप।
4: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
2: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
4: अरे बहन जी ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
2: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
4: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
2: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो यहाँ। यहाँ बैठो मेरे पास।
5: जी, जी, जी।
4: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
2: जी।
6: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
2: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
7: दीदी लता। दीदी लता।
2: लता
8: जी। दीदी
2: क्या ये लता।
8: जी दीदी।
2: अरे नहीं।
8: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
2: अच्छा।
8: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
2: अच्छा
8: जी दीदी।
2: लता ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हां
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूं।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जुबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।

0: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी
0: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
0: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
0: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो,
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देते हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
3: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
4: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਹੋਂ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया।

0: है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लोहन सुनो अजनबी फिल्म का गीत उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ा विच।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜਨਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण, महिलाओं के लिए वाहन कर में छूट और पुलिस हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित 22 अहम प्रस्ताव पारित किए। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हुई। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर टैंकों में न उतारने के आदेश दिए। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की नवनियुक्त मानद महासचिव मीना कंबोज ने अपना कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस विधेयक में दोषी को 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें दोषी पाए गए अपराधी की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड भी शामिल हैं। मामलों के शोध शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने के प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2-3 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने देने की पुष्टि है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटान के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। मोदी सरकार में त्वरित न्यायालय सुनिश्चित करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लाया गया। डॉ. सिंह ने कहा कि हाल ही में हुई परीक्षा लीक की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं यह निर्णय लिया कि अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता

0: रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए ये संशोधन लाया गया है ताकि इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाया और बहाल किया जा सके। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर न होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा न रखने का आरोप लगाया। हरियाणा मंत्रिमंडल की आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण, महिलाओं के लिए वाहन कर में भी छूट और पुलिस हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित 22 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत एक पत्रकार वार्ता में बताया कि महिलाओं के नाम 20 लाख रुपए तक के गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर 1% कर छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन और शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा अग्निवीरों को IRB, NDRF, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ विभाग के गार्डों के पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूरे राज्य में भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। इसके आयोजन की तैयारियों के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी जो कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनके सफल आयोजन को सुनिश्चित करेगी। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं। हवाई संपर्क बढ़ाने से अमृतसर की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को आदेश दिए कि बगैर सुरक्षा उपकरणों के किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर टैंकों में ना उतारा जाए। आज भिवानी में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में पत्रकारों से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष व पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पालका ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निपटान करना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को एक ही जगह उपचार सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले, इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग के सचिव व आयुक्त को आयोग की तरफ से पत्र लिखकर कहा है कि जो भी ठेकेदार सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं देता उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्थानीय निकाय से जुड़े अधिकारी सफाई कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की पक्का करने व ठेका प्रथा वापस लेने संबंधी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के मंत्री से बातचीत करके विचार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की नवनियुक्त मानद महासचिव मीना कंबोज ने आज पंचकुला में अपना पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण समारोह में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री मीना कंबोज ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया

जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों तक परिषद की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर नीनू गांधी ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी के कारणों, लक्षणों और बचाव के लिए उपायों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें समय पर जांच कराने और उपचार के लिए प्रेरित किया गया। फरीदाबाद के बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम के अलावा सभी फर्स्ट रेफरल यूनिट, पॉलीक्लिनिक और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रदर्शनी लगाई गई ताकि लोग हेपेटाइटिस की समय पर जांच और उपचार करवा सकें। भिवानी में भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला नागरिक अस्पताल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी की समय पर जांच, उपचार और बचाव के प्रति जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण, महिलाओं के लिए वाहन कर में छूट और पुलिस हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित 22 अहम प्रस्ताव पारित किए। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: सिविल हवाबाजी बारे सकत्तर समीर कुमार सिन्हा, जो कि AAI दे चेयरमैन विपिन कुमार दे नाल अमृतसर विखे लॉन्च दा हिस्सा सन, ने कहा कि यह हब हवाबाजी खेतर लई सरकार दी एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मुसाफिरां नूं उन्हां दे राज तों अंतरराष्ट्रीय स्थानां तक सफर करन विच सहूलत देगा। इस लॉन्च नाल अमृतसर तों 2 रोजाना ईजी कनैक्ट उड़ाना चालू कर दिखाई गई ने। एयर इंडिया दिखाई उड़ाना से सफर करने वाले मुसाफिरों एक निर्विघन यात्रा यकीनी बनाने रवानगी तो पहला आवाजाई प्रक्रियावान पूरा करने की लड़ हों, जिस भारतीय नागरिकों लाजमी डिजी यात्रा रजिस्ट्रेशन शामिल है। ईजी कनैक्ट उड़ाना से अंतरराष्ट्रीय पद्धर से जुड़न वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों डिजी यात्रा रजिस्टर करना जरूरी है। एयर इंडिया दजी कनैक्ट उड़ाना बुकिंग एयर इंडिया की वैबसाइट, मोबाइल ऐप, संपर्क ट्रैवल एजेंटा समेत सारे माध्यमों से उपलब्ध ने। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लियाने बारे भारतीय रिजर्व बैंक की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के लिखती जवाब देंदया खजाना राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दसिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को फील्ड ट्रायल लई 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर बैंक नोट लियाने की तजवीज़ भेजी सी। उन्हें कहा कि फील्ड ट्रायल दे सफल होने तो बाद ए पॉलीमर बैंक नोट नियमित तौर पर जारी किए जाएंगे। उन्हें कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दसिया कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययन मुताबिक पॉलीमर बैंक नोटा की उम्र कागजी बैंक नोटा के मुकाबले काफ़ी ज्यादा होंगी है। उन्हें भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक मुताबिक पॉलीमर नोटा के नाल नाल कागजी नोट जारी करने की भी तजवीज़ है। इसके नाल ही कागजी नोटा नूं पॉलीमर बैंक नोटा नाल बदलन की कोई तजवीज़ नहीं है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AARN जलंधर। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के इकलौते राज्यसभा मैंबर संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने सूबे के पुलिस के डायरैक्टर जनरल DGP को बेनती की है कि वह अपने 6 पुलिस सुरक्षा गार्डों को वापस लैन और पुलिसिंग मजबूत करने लिए उन्होंने जलंधर जिले के 2 थाने भी तब्दील कर। DGP को लिखे एक पत्र में संत सीचेवाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की चिंता प्रकट की। उन्होंने अपने पिंड में एक रात में वापरिया चोरी की 8 घटनावां का भी जिक्र किया। संसद मैंबर ने कहा कि सुल्तानपुर लोधी विखे गुरु नानक देव जी संबंधित काली मेई नदी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी अपराधिक गतिविधियां विच वाधे कारण असुरक्षित महसूस कर रहे ने। उन्हें कहा कि जदों लोग सुरक्षित नहीं ने तां एक संसद मैंबर होने के नाते उन्हां नूं सुरक्षा मुलाजमां दी लोड़ नहीं है। सीचेवाल ने पत्र दीयां कापियां राजपाल, मुख्यमंत्री अते जिला पुलिस ते जलंधर अते कपूरथला दोवां जिलियां दे प्रशासनिक मुखियां नूं भी भेजियां ने। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी BJP के संगरूर दफ्तर से पेट्रोल पंप नाल हमला करने वाले 2 मुलजमान नूं अज पुलिस वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया है। संगरूर के SSP डॉ रवजोत ग्रेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राही जानकारी दिंदिया दसिया कि फड़े गए मुलजमान की पछाण हैप्पी सिंह अते जसप्रीत सिंह जस्सी वजों हुई है।
2: जो ए 2 अक्यूज्ड सीगे उन्होंने अज सवेरे संगरूर तो अरेस्ट किया गया ते इना दा जो एक हैंडलर है जिन्हों की ये राणा बाई दे नाम तो बुलांदे ने उना दे नाल मिलके इना वालों ए कॉन्स्पिरेसी कीती गई है। जदों इना ने वारदात नूं अंजाम दिता है उस तो बाद इना नूं PI ट्रांजैक्शन राही पैसे आए ने। साजो समान यूज किया गया सीगा, मोटरसाइकिल ते बीयर दीयां बोतलां आदि वो सारा साडियां टीम्स वल्लों रिकवर किया गया, क्योंकि ये एक क्रॉस बॉर्डर लिंकेज ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ, ਡਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ

0: देशवासी। अभी आपने इस फिल्म में नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। डीजे अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का था। लीजिए सुनिए उदित नारायण और प्रीति उत्तम को फिल्म गदर में। उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार

0: वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, फिल्म है चांदनी, संगीत शिवहरी का, आवाजें लता मंगेशकर और बाबला की।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म मिशन कश्मीर में। बोल लिखे हैं राहत इंदौरी ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।
1: छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
2: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
0: कुमार सानू को फिल्म दुश्मन में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह।

अभी आपने शफाकत अमानत खल अली और सलीम मर्चेंट को फिल्म डोर में सुना। गीतकार थे मीर अली हुसैन, संगीतकार सलीम सुलेमान। अब सुनिए सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल को फिल्म फना में। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं वीएम आनंद की लिखी नाटिका बस की सीट।
1: भाई साहब जरा संभल के बस में खड़े होइए, ये आपका घर थोड़ा ही, सीने से खड़े होइए।
2: भाई साहब मेरे पैर पे पैर मत मारिए।
1: ओह ये बैग संभालिए ना अपना। भाई साहब आप बैग तो मेरे ऊपर फेंक रहे हैं।
2: भाई साहब मेरे सिर पे ये क्या रख दिया आपने, इधर कीजिए।
1: आगे चलिए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं?
2: ओफो
1: माता, पीछे क्यों नहीं होती है?
2: इधर इधर ही खड़ा।
1: ये खिड़की के पास में।
2: हाँ ठीक है। ओफो कितना रश हो रहा है इस बस में, धक्के पर धक्के लग रहे हैं, दम घुटा जा रहा है यार।
1: हाँ यार दीपक, लगता है इस बस में तो हम दोनों का कचूमर ही निकल जाएगा, हे भगवान।
2: लेकिन प्रकाश तुम तो यार आए दिन कहते हो कि बस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, सीट तो मुझे मिली जाती है।
1: अरे यार ये तो मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में सीट हासिल कर लूँ।
2: तो ठीक है, आज हम भी देखें कि तुम बस में सीट कैसे लेते हो, लोगों से वाकफियत कैसे काटते हो। देखे
1: ए दीपक, देख मुझे तू जोश मत दिला, हाँ वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई सीट ले ही लूंगा और विकासपुरी तक बैठ कर ही जाऊंगा।
2: तू ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा हाँ। तो देख क्या रहे हो, किसी सीट पर बैठ कर दिखाओ तो जाने।
1: तो ठीक है, लगी शर्त?
2: लग गई।
1: डन
2: डन।
1: तो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहो और जब मुझे वहाँ सीट मिल जाएगी मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा, फिर आकर देख लेना अपनी आंखों से। अब मैं चला। भाई साहब सर आगे जाने के लिए गफा तो दीजिए। अब थोड़ा सा उसका बोलिए,
2: थोड़ा सा रिस्टर दे दीजिए आगे जाने के लिए। मेरा जूता, भाई साहब मेरा जूता तो छोड़ दीजिए प्लीज। अब माता जी थोड़ी सी आगे जगह जाने के लिए जगह दे दीजिए प्लीज।
3: वो जो बुढ़ा उस कोने की सीट पर बैठा है, लगता है यही काम का मुर्गा है। तो चल प्रकाश प्यारे, आज इसी पे हाथ मारे।
1: भाई साहब जरा आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज प्लीज।
3: अंकल आप और यहाँ? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ अंकल, आपसे ही।
4: सीट के पीछे की तरफ खड़ा है, आपको ही आवाज दे रहा है।
5: मुझे आवाज दे रहा है?
3: हाँ अंकल, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना।
5: नहीं बेटे नहीं, भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अब बुरा नहीं मानना बेटे, अब क्या करूँ, बुढ़ापा छा गया है, नजर कमजोर हो गई है, मैं अब जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाता।
3: लेकिन अंकल मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था, आप शायद वहीं पर रहते हैं ना। वो वहीं पे
5: वहीं है। मैं विकासपुरी में ही तो रहता हूँ।
3: जी हाँ विकासपुरी में, विकासपुरी में। और अंकल आप शायद उसी ब्लॉक में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं।
5: यानी कि तुम भी जी ब्लॉक में ही रहते हो?
1: बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने, बिल्कुल ठीक कहा, हम भी जी ब्लॉक में ही रहते हैं।
5: अरे वाह वाह वाह वाह, फिर तो तुमने मुझे खूब पहचाना भाई। तुम्हें ये भी पता है कि मैं विकासपुरी में रहता हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ। बहुत अच्छे मेहरबान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मुझे भी याद आ रहा है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं

0: जरूर है।
1: याद कीजिए अंकल, जरा ध्यान से याद कीजिए।
2: अरे कहीं तुम उसके बेटे थे?
1: हाँ अंकल, मैं उन्हीं का ही तो बेटा हूँ, उन्हीं का।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, नारायण दास का।
3: अब पहचाना आपने।
2: और तुम्हारे फ्लैट का नंबर भी?
1: अंकल फ्लैट नंबर 128
2: ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर भाई, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ बेटे।
4: पापा आप क्यों इस लड़के से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं? ना जाने ये विकासपुरी में रहता भी है या नहीं, ना जाने कौन है कैसा है।
0: अरे बेटी, मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा क्या जाता है, है? ही कोई भी हो लेकिन लड़का अच्छा लग रहा है।
1: अंकल आप मुझसे कुछ कह रहे थे?
0: मामा और भाई मैं कह रहा था कि खड़े क्यों हो बेटे, बैठ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ यहाँ, हम तीनों ही सीट पर एडजस्ट हो जाएंगे।
3: नहीं अंकल, मैं आपके साथ भला कैसे बैठ सकता हूँ? अब आप दोनों आराम से बैठे हुए, अब बैठे रहिए। अब दो की सीट पर भला हम तीनों कैसे बैठ सकते हैं? नहीं नहीं, आपको भी परेशानी हो अंकल, आप बैठे रहिए।
0: बेटे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे तुम कोई पराए थोड़ा ही हो, अपने नारायण दास के ही तो बेटे हो।
4: ओ पापा, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए? खड़े रहने दीजिए उसे, कहाँ बैठेगा वो, हमारी सीट पर।
0: अरे तुम चुप रहो।
1: हाँ तो बेटे बैठ जाओ ना। हाँ बैठो बैठो बैठो।
0: अरे यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे बेटे तुम जरा उधर सरक जाओ ना, सरको सरको।
3: आप इतना कह रहे हैं तो मुझे बैठना ही पड़ेगा।
0: बैठो बैठो।
3: थैंक यू अंकल।
0: बेटा ये है मेरी बेटी रश्मि, इसे तो तुमने पहले देखा ही होगा। अरे हम भी तुम्हारे ब्लॉक में ही रहते हैं भाई।
1: जी इन्हें? नहीं तो मैंने तो इन्हें वहां कभी नहीं देखा।
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह, अरे ये है शरीफ लड़के की पहचान, खानदानी लड़के की पहचान। मजाल है जो नजरें उठाकर किसी लड़की की तरफ देखा जाए। वाह वाह
3: जी
0: भाई, कमाल है। यानी इतने सालों से हम भी वहीं रह रहे हैं, तुम भी वहीं रह रहे हो, हमारी बेटी को आज तक तुमने देखा ही नहीं। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो?
3: जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ।
0: बैंक में मुझे याद आ गया। भाई नारायण दास भी कितनी किस्मत वाला है, एक तो लड़का इतना शरीफ और फिर बैंक में नौकरी करता, यानी कि सोने पर सुहागा।
3: अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भला मैं आप लोगों के सामने हुई क्या?
0: वाह वाह वाह वाह, अरे ये तो तुम्हारा और भी बड़प्पन है बेटे, इतना कुछ होते हुए भी कह रहे हो कि तुम हमारे सामने क्या हो। वाह वाह भाई, मैं कहता हूँ धन्य है नारायण दास जिसके घर तुमने जन्म लिया।
5: अरे प्रकाश।
3: हाँ भाई क्या बात है दीपक?
5: अरे सीट मिल गई क्या?
3: हाँ हाँ मिल गई, लेकिन तुम अभी वहीं लटके रहो।
0: अरे ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से?
3: अंकल ये मेरा दोस्त है, दरअसल उसे सीट नहीं मिली ना, इसीलिए पूछ रहा था कि यहाँ कोई सीट।
0: अरे उसे सीट मिलेगी भी कैसे भाई, खड़ा रहने दो उसे वहाँ। बस में देखो तो क्या बुरी हालत हो रही है। बेटे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे?
3: नहीं अंकल आप कहकर तो देखिए।
0: बेटा अब तुम जवान हो गए हो, नौकरी भी कर रहे हो, भाई शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है?
3: शादी? अब अंकल वो शादी?
0: अरे तो अब सोच लो ना बेटे, अभी तो आधा घंटा बाकी है विकासपुरी आने में।
3: जी आधा घंटा?
0: हाँ, अरे आधे घंटे में तो लोग कई कई फैसले कर लेते हैं।
3: लेकिन अंकल शादी के बारे में मैं कैसे सोच रहा हूँ?
0: सोचना क्या है, कोई लड़की देखी क्या? नहीं देखी? अरे तो देख लो ना बेटे, लड़की देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा।
3: जी जी, जी, जी मैं आपका मतलब नहीं समझा।
0: अरे भाई मेरे साथ है, देखो मेरी बेटी जो बैठी है ना, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
3: बेटी? आपकी बेटी?
4: पापा क्या हो गया आपको, क्यों आप बीच में मेरा नाम ले रहे? मैंने नहीं करनी इससे शादी, ना जाने कौन है ये।
0: अरे बेटी ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, शरीफ खानदान, पढ़ा लिखा, बैंक में नौकरी है? मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में टांग मत रहा।
4: पापा आप भी अजीब बातें करते हो, अगर आप हाँ कर भी दें तो ये हाँ कैसे करेगा?
0: अरे क्यों नहीं करेगा बेटी, ये क्या इसका बाप नारायण दास भी हाँ करेगा? अरे इसे हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है। क्या

0: तुम्हारा
1: जी अंकल आप ही काफी मजाकिया किस्म के आदमी है भाई। वाह क्या बात निकाली है आपने अंकल।
0: अरे तुम्हें हमने बस में सीट दी है यार, कोई मजाक नहीं है।
1: अंकल आप तो नाराज हो गए। मैं ये कब कह रहा हूँ कि जो सीट आपने मुझे दी है वो कोई मजाक है, बल्कि अंकल मैं तो सारा जीवन आपका ये एहसान नहीं भूल सकता।
2: अरे प्रकाश।
1: हाँ भाई क्या बात है।
2: अरे खुद तो सीट लेकर वहाँ पे बैठ गए हो, अब मेरा क्या होगा। अरे कोई और सीट है वहाँ।
0: अरे नहीं भैया नहीं, यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है। अरे भाई वहीं खड़े ना भाई यहाँ। देखा देखा, अरे तुम्हारा दोस्त छचूंदर की तरह अभी तक डंडे से लटका पड़ा है और धक्के भी खा रहा है।
1: जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप मुझे सीट ना देते तो मेरी भी वही हालत होती।
0: तो बेटा तुमने जवाब दे दिया, बल जल्दी करो विकास पर आने वाली है।
1: किस बात का जवाब अंकल।
0: हेलो, अरे जो चीज अभी मैंने पूछी थी वो अभी भूल गए, तो तुम्हें ये क्या याद रहेगा कि हमने तुम्हें सीट दी थी। अरे बरफुरदार, रश्मि से शादी करोगे ना।
1: रश्मि से शादी, लेकिन अंकल अभी
0: अच्छा पिताजी से पूछना है। अरे पिताजी की बात छोड़ो बेटे, रश्मि के लिए नारायण दास तो कभी ना कह ही नहीं सकता। और जब उसे ये पता चलेगा कि हमने उसके बेटे को बस में सीट दी थी तो वो एकदम हाँ कह देगा।
1: वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।
0: क्या कहा। अच्छा अच्छा, तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे तो बस में सीट लेने की क्या जल्दी थी। उठ जाओ हमारी सीट से।
1: अरे प्रकाश प्यारे अब क्या करेगा, अगर मैं उठता हूँ कि शर्त हार जाता हूँ, और अगर यहाँ बैठा रहता हूँ तो ये खूनसठ मुड्ढा अपनी लड़की को मेरे गले से मर देगा। ए भगवान अब क्या करूँ।
0: वो अंकल मैं ये कह रहा था कि अच्छा तुम अभी शर्मा रहे हो। ठीक है भाई, खानदानी लड़के हो, एकदम बुजुर्गों के सामने कैसे कह दोगे।
1: जी जी
0: तो फिर मैं हाँ समझू,
1: लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुनिए। अंकल मेरी तो शादी हो चुकी है।
0: आए, शादी हो चुकी है। अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो। आए, उठो उठो यहाँ से। बड़े आए सीट लेने वाले, आज खूंदे न जाने कहाँ से बस में चढ़ जाते हैं। उठिए उठिए उठिए उठिए उठिए यहाँ से।
3: क्यों बेटे मिल गई सीट, लाओ निकालो मेरी शर्त के पाए।
1: भाई ये ले तेरी शर्त के। ये बस की सीट तो बड़ी महंगी पड़ी यार।
4: अरे अरे रश्मि तुम यहाँ।
5: अरे दीपक।
4: कौन दीपक।
5: दीपक ये मेरे डैडी हैं।
4: हैं? ये तुम्हारे डैडी हैं? नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते नमस्ते, तुम कौन हो बरखुर्दार।
5: पापा ये वही तो है दीपक।
0: दीपक, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी।
5: हाँ पापा।
4: अंकल अब तो आप समझ गए ना। अंकल मैं आपसे मिलना चाह रहा था। अंकल
0: मुझसे मिलना चाहते हो, किस लिए भाई।
4: अंकल अब आप खुद ही समझ जाइए ना।
0: ओ अरे मैं तो समझ ही गया हूँ भाई। आओ बैठो इधर बैठो। और भाई असल में तो ये सीट तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी बेटा।
1: मुबारक हो दीपक, मुबारक हो भाई, आज तो दो दो जगह मोर्चा मारा है।
6: तो ये थी नाटिका बस की सीट। लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुशील बनर्जी ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
5: छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
6: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश न्यूयॉर्क फिल्म से, इसे गाया है मोहित चौहान ने, संगीत प्रीतम का बोल संदीप श्रीवास्तव के।

मोहित चौहान के बाद अब सुनिए सोनू निगम को फिल्म सरबजीत में। बोल लिखे हैं जानी और रश्मि विराग ने, संगीत जीत गांगुली का।

0: अभी आपने रुस्तम फिल्म में जुबिन नौटियाल को सुना। वो लिखे थे मनोज मुंतशिर ने, संगीत तैयार किया था जीत गांगुली ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में शंकर महादेवन का गाया गीत। बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने। फिल्म का नाम फिर मिलेंगे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
5: मुकेश के गानों में है सादगी।

0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मिक्की वायरस फिल्म से। इसे आवाज दे रहे हैं अरिजीत सिंह। गीत संगीत हनीफ शेख का।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर

0: गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश

0: बाबू श्री कृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन

0: इन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ

0: अमले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से। फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जख्मी में सुना। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अलीबाबा 40 शोर में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
2: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
3: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था ज़ैबुन्निसा। कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: बिगन।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पीरिय चढ़ैबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया,

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियां, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामन्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो ऐसे सुन रहे हो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुर सांझ। प्रोग्राम का अगला गीत जिमी कलेर दी आवाज़ विच।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे।

0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।